0: 都没干嘛，我也没什么对不起他。
1: Giving up comforts for just a few more hours of practice, Arslan pushed himself beyond limits. Yet, despite his determination, something always stopped him at the final hurdle.
2: First top eight at a TWT final. He's got the spot.
3: मैं जो दो इवो जीत चुका था और मैंने सोचा कि यार ये भी जीत जाऊंगा easy है जिससे पहले जीत. तो इंसान हैं गलतियां करते रहते हैं हम थोड़ा सा गुरूर में आ गया था थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत जाऊंगा जो कि मैं फिर मुंह के बल गिरा मैं हार गया.
4: When you become a very big thing, people are likely to find loopholes in your game.
5: प्रैक्टिस में थोड़ी सी इसने कुताही की.
3: आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जल्दी अब मुझे मैं रियलाइज करता हूँ कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने टाइटल को मेंटेन करने के लिए.
6: पता नहीं ये टेंशन भी आ जाता है कि मैंने जीतना लेकिन नहीं हो पाता उससे.
3: असल में ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान हर दफ़ा जीतता रहे.
7: अरसलान काफ़ी इमोशनल भी होता है कहता कि यार तुम्हारे पास टेक्नो वर्ल्ड टूर का टाइटल है मेरे पास ईवो का टाइटल है.
8: TWT finals has always eluded him.
9: The Tekken World Tour follows a different sort of format, so Arslan had difficulty understanding how that would work.
10: 이상하게 이제 파이널에 왔을 때 뭔가 굉장히 어려워하는 느낌이 이제 들었어요. 왜냐면 그때 플레이도 뭔가 아슬란이 뭐 평소에 하던 그런 느낌이 아니고.
3: 근데 이 दफा मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ जीतने के लिए और मैं इसलिए ज़्यादा excited भी हूँ क्योंकि last tournament है for Tekken. अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो मैं हिस्ट्री बना लूंगा दुनिया के अंदर.
2: He is the greatest of all time, without a doubt. Nobody has as many EVO titles as this man right here, and he's done it again.
3: क्या कह रहा है अभी?
11: पास शर्ट्स रह गई हैं और पासपोर्ट रह गया आपका. ठंड हो रही वहाँ पे?
3: हाँ वहाँ पे तो मेरा ख्याल है वहाँ पे और न्यू ऑर्लियंस में से देखा था तो दिन में 15 से 12 था टेम्परेचर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी. बस मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ बाहर गाड़ी खड़ी हुई है तो बस जल्दी जल्दी करो. मम्मा कैसे हैं? मम्मा नीचे
11: कहाँ?
3: तो रानिया कहाँ पे? नीचे मम्मा पास है.
11: रानिया सोई और स्टिक आपकी?
3: स्टिक मेरी गाड़ी में. गाड़ी में
11: ठीक है.
3: दुआ करना. हाँ फिर मैं बैग में रहता हूँ उसके ऊपर से जा रहा हूँ फिर मैं. ठीक है हाँ चलो दुआ करना. तीन घंटे बाद फ्लाइट. हाँ ठीक है. और सो गया बीबी? हाँ चलो निकल रहा हूँ मैं. गाड़ी खड़ी है. चलो ठीक है मम्मा.
11: अच्छा निकलता.

0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की, फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले पे टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: लोग कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको ईजिली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even ki mujhe bahut maar bhi pada karti thi, mujhe bhi yaad hai ki jo mere ek bhaiyon mein se ek bhai the, तो वो मुझे बहुत मारा करते थे। उनके एक दफ़ा तो आर्केड सेंटर के अंदर जाग

0: कर मुझे बहुत मार पड़ी। और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊँ कि मेरी बिस्ती हो रही है वहाँ पे, जो लोग मुझे इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन में गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर मैं फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा दो तीन दफ़ा इतना हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
1: मैं जाके ले आती थी, वो डर थी मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के यहाँ से पहले पहले इसको घर ले आओ।
2: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सब ने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
3: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है, गेमिंग में जाना है, तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
2: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर जिस तरह की मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
4: Arsalan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arsalan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arsalan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुप पिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कोई सेलेक्ट करूँगा। ए में लग सकता है ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर अरसलान ए में, तो नी पीछे से आ गया कहता अरसलान भी उलसान भी आ गया, मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप में आ गए। इस साल मैंने कहा नहीं, मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ए आ गया। इस बार मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
3: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी, उसमें क्या होता है कुछ। मैंने फिर घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती।
4: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
2: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
4: तो मेरे लिए हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा। रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना है तो 5 मिनट के लिए पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद घर आना, तो मसला नहीं है।
3: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता था, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके लिया था तो बस फिर बच्चे सवाल हो जाते, कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी त्वजा ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है, मम्मा जो मर्जी कर लें, तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
4: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
3: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो, कुछ बन जाओ।
4: तब मैं दिल दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को। लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप करो ना तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्क लेना लाइफ के अंदर, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मैं कहा मुझे एक बार मौका दें आप, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा, अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा, मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए।
2: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी पहुंच गया मैं, आपकी कॉल आ रही थी, अभी पहुंचा हूँ। अभी मैंने अंदर चेक इन किया, होटल के अंदर आया हूँ। मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, ठीक है?

0: 우승을 하게 된다면 굉장히 좀 철권 7을 굉장히 깔끔하게 종료하고 철권 8로 넘어갈 수 있는.
1: वो लास्ट है मेरी तरह वो भी लास्ट हम खेल रहे हैं और उसमें बहुत वो है कि ना मैं जीतना जिस तरह मेरे अंदर बहुत पावर इस वक्त एनर्जी है कि मैं जीतना आई थिंक वो सर हर चीज़ करेगा जीतने के लिए इस दफ़ा
2: ही वॉन्ट्स टू बी वर्ल्ड चैम्पियन एंड इफ वॉन्ट्स बी वर्ल्ड चैम्पियन इन टेकन 7 दिस वीकेंड इज लास्ट शो
0: कुरम मो छेगांगजा मो कुरम टाइटल을 얻고 싶은 게 아닌가 싶어요 그래서
2: आई बिलीव ही कैन डू इट फॉर श्योर बट वी विल हैव टू सी
1: जिस तरह की मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे यकीन है अपने आप कि मैं जीत जाऊँगा इस साल का टेकन वर्ल्ड टूर

0: ये कैसे जाएगा?
1: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
2: हम जिस सेंटर में खेला करते थे, उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है मैं हराता हूँ, मैं जीतता हूँ, तुम मेरे पे पैसा लगाओ। कहता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ करूँ। कहा चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना देता हूँ। तो 5,000 रुपया उसने लगाया, मेरा पासपोर्ट बनवाया, मैं उसके साथ ही गया, उसने पासपोर्ट बनवा के दिया। फिर एक बंदा था दानी भाई, उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे, मुझे बाहर भेजो जैसे करके। कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी, आर्केड स्टिक, जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो। तो पाकिस्तान में वाहिद मैं बंदा था, पहला वाहिद बंदा था जिसके पास स्टिक थी।
1: इट वाजंट जस्ट अ जॉयस्टिक, इट वाज अरसलान्स मैजिक वांड थ्रू व्हिच ही कास्ट हिज गेमिंग स्किल्स फॉर द वर्ल्ड टू सी।
2: टिकट मेरी दानी भाई ने कराई थी, खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे। तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल, पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, जहाज में बैठा, काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहले पहली दफ़ा। और ओमान में फिर मैं रुका, जो दानी भाई के दोस्त थे कुछ, जहाँ पे हम देखा होगा बाहर जाते हुए फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा, वहाँ पर बैठे होते हैं साइडों पर, वहाँ पर मैं ठहरा, टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पर मैं जीत गया।
1: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
2: मैं टूर्नामेंट पे गया, पहली दफ़ा कोरियंस को देखा, जापनीज को देखा, उल्सान को देखा, सबको मैं हरा रहा था। तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है, वो आया, मैं इससे कहा, मैं कहा मिस्टर खेलो एफटी ना, एफटी खेल रहा तो उल्टे से कैरेक्टर ले रहा, मतलब इंजॉय कर रहा है कि हार रहा जीत रहा कोई मसला नहीं है।
1: इन टेकन एफटी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टू 10, मीनिंग द विनर इज द फर्स्ट टू विन 10 राउंड्स टू क्लेम द मैच।
2: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते, कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते हैं। मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट मिलता है कि नहीं मिलता है ये मुझे, मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके। तो उसने आईडी लिया, आईडी का प्लेयर था, उससे मैंने बहुत बुरा मारा और लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने आईडी लेके हार रही है। कहते वे आर यू फ्रॉम, मैं कहा पाकिस्तान। तो मैप पे गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे, मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं।
1: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान, and it was Arslan Ash who made it happen.
3: Hello, haan bas uthi hu main, taiyari full hai aur dua karna, mama se bhi kehna ke dua kare.
4: First and foremost, one of the greats, one of the goats, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee.
5: Boom! Group B is filled. Anakin, Rafe, Kokoma, and Al to fill.
4: Make some noise for Arslan Ash. The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
1: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds. Crowd's energy builds with each match. And Arslan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
6: So Ulsan going with the white Kazumi and Arslan. I didn't realize their names are pretty similar.
2: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा, मैं स्टेज पे हूँ, उल्सान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो पी एल डी पे, मैं पी एल

0: रेडियो पे बैठा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं टांगे मेरी शेक करने लग पड़े। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा। पहले मैं ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज तेज कांपने लग पड़ी मेरी टांग, और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है क्यों, और वो रिलैक्स है, वही बंदा वही गेम। एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था, उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया। तो फिर मुझे पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बहुत लास्ट राउंड पर लास्ट पॉइंट पर हार, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है। डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग।
1: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Olsen dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
2: Look at this Group B, man. We have the four-time EVO champion, Arslan Ash, in this group.
3: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
2: oh
3: MYK.
2: My goodness.
3: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
2: Let's find out.
4: So, 日本の予選でも一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで。
1: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
3: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6, best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion, best result in TWT 2023.
1: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
2: Stuff from Tekken 7.
3: Ninja battle. At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play, too.
2: Oh my goodness. Wow.
1: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
3: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
1: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
5: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
6: लव्ज इस्तेमाल होता था बच्चियां वाला तो ये जो फीमेल्स करेक्टर खेलते थे ना, मेल्स नहीं खेलते थे, ये उनके लिए इस्तेमाल होता था।
0: वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी, तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे कि आप हम लड़कियों से हारे हैं।
7: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है, तो यू नो अल्फा बॉयज़ हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं, ठीक है, तो ठीक है ना, बॉयज़ को सूट भी करता है।
0: और जो लड़कियों से खेलता था उस पर भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं, मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि, और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से, तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ, मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप। तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे, जूलिया से, फिर नीना से, लीली से,
5: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की नस्बत।
8: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं, उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है, यानी कि उनको टेकन में मेल की नस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है, वो इसलिए इनसे खेलता है।
9: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around. His mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her.
10: Haan Zafina ko maine bataya tha, maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na, dekh rahi thi main isko khelte hue, main kaha nahi ab ye naya character aaya hai to isse khelo.
11: Zafina ko maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath, तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप

0: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Ni seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
1: पर मैंने ना हिम्मत कठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है जिंदगी के अंदर वो मैंने और अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पे बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो सी ए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने वीज़ा की मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
0: But Arsalan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality.
2: Six
1: rounds straight मार दिए मैंने और वो न्यूज़ बहुत वायरल की कि अरसलान ने सिक्स राउंड में को मार दिया स्ट्रेट नहीं एक भी मैच नहीं जीता.
0: In the grand finals, Arsalan achieved the impossible. A fairy tale ending to an unimaginable journey.
2: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
0: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
1: Twitter खोला कुछ हजार followers हो गए. बड़ी जा रहे हैं, बड़े लोग follow कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक player आया है, पाकिस्तान का भी कोई नाम है. YouTube पे लोग मुझे कर रहे हैं. पहली दफ़ा मैं YouTube पे videos आने लग पड़ी. और मुझे पता नहीं famous लोग Markman जो अब Evo पे जिनका वो जो है director सारी कि किस नी को हराया है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से. तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे. फिर पाकिस्तान आया लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो. तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नी को हराया. फिर इमरान की मुझे कॉल आई. मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पर था तो कहता है इस्लाम तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नी को. और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था. कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया. और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में. तो लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे तुमने किया है काम.
0: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arsalan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
3: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah. Is actually, this is like an instant collector's piece now.
4: और भाई टेंशन कम हुई?
5: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से. अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया.
0: As excitement and nerves soar, Arsalan waits to see who will move forward from Group C and D.
6: Is the next one.
7: But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about his Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
8: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. और
0: जो क्रश पुश रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक.
9: दे आर मेकिंग
6: loud noise out there.
0: But Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Lo Hai shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical. Yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short. Against all odds, Atif Bhatt failed to secure his place in the top eight.
1: To be very honest, I was happy too. I didn't say that I was sad. A
9: pure gamer can never be someone's friend in the game. He will compete with him.
1: Because Wahid was a player who could harass me. If he was in the top eight, in the grand final, then I was happy too. But as a friend, I was sad too. So the feeling was mixed if I talk openly.
0: Meanwhile, Arsalan's fierce rival Ni made it to the top eight. Though from the loser's bracket. Adding even more tension to their heated rivalry.
10: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
1: Or Ni loser mein tha to isse achhi baat ho hi kah sakti hai. Wo to haar jata tha mere taraf se, main to dua hi kar raha tha ki Ni haar jaye. Aur main to chahta tha sabhi haar jaye. Ab main jeet jao.
0: Many dismissed Arsalan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
1: Kisne mere zehen mein baat dali thi ki tum Nee ko jitna marzi hara lo jab tak usse tum big stage pe nahi haraoge. Main kaha big stage kya hai? Kya hai big stage? Kisi tournament ke grand final mein, specifically Evo ke grand final mein tum usse haraoge tab tumhe log kahenge tum sabse strong player ho duniya ke andar.
0: For a Pakistani like Arsalan Ash, the biggest fight often happens off stage. Getting a visa. After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. One question remained. Could he prove the world wrong by defeating Ni? At Evo USA, Arsalan answered that question with unmatched skill. Defeating Ni to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
1: Defeating Ni, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two egos in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
0: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
11: People were still saying it was a fluke for some reason, but after the second time, maybe third time, I was just like, okay, there's a bit. Watch out for this guy.
12: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
13: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, Ni to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating Ni, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
1: Bahut tweets thi. I don't know how much tweet, lekin main trend kar raha tha us waqt pure USA ke andar, Pakistan ke andar bhi. Pakistan mein koi third number pe, USA ke andar pehle number pe main trend kar raha tha us waqt. USA is massive. To wahan pe trend karna is a huge thing. Aur Evo ki wajah se I was trending in USA. I was getting a lot of followers. Aur log duniya ke jahan se bhi hain tweets kar rahe hain. फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं. अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होना पड़ा था तब तक. और फिर मैंने सजदा किया वो जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था
6: paying respect I love what I'm seeing there beautiful
1: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी सजदा क्यों किया गया अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी स्टोरीज लिखी गई आर्टिकल्स लपने लग पड़े काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त ही मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
14: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी ये बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे ये जब जीता है ना सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब यही वसीला है हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे
1: हमारे पास पैसे भी नहीं थे और मैं जो 2 लाख था 2 लाख से सोलह शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास मतलब आम से ज्वेलरी आम सा पर्स आम से कपड़े सारा कुछ आम सा तो अब शादी किस तरह करना तो शादी के लिए भी उधार लेना पड़ना था तो उधार दे कोई नहीं रहा था ख़ानदान में
14: तो उधार कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले लेकिन फिर मैंने कहा कि अल्लाह ताला ये जा रहा है ना तो इसको हमारा वसीला बना दो
1: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार बेटा भी कुछ नहीं करता इनका और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था
14: तब ये जीते जब तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब होकर सुनता अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर से करीब हो तो वाकई इस तरह सुना फिर हम रोने लग गए तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब होकर से वो मेरा मुझसे पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था
1: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का
0: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
15: Arslan, big day. What are your thoughts?
16: बस प्रेशर में रहने की कोशिश नहीं कर रहा ना नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम बाकी जो रहा वो मंजिल हाँ रेडी हाँ मैं खुद तो रेडी नींद पूरी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है
17: कल परफॉर्म तो अच्छा किया काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया अभी आज का मैं लोहा हिस्से वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं 6 तो कोरियन है एक जापानीज है उसके एक पाकिस्तानी देखते हैं क्या होता है
15: पाकिस्तानी है बापियो खाली इस बार
17: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
1: है एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता उनका स्टाइल नहीं देखता मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके मैंने पूछा ऐसा क्यों है कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते होता कुछ हो रहा है तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना प्लेयर्स को देखना नहीं है मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहा इसलिए लोहा के करैक्टर्स देख लेता हूँ उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़ लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहाई को स्टडी नहीं करूँगा शाह उस्ताद उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी
18: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है
19: ये हैंड वॉल ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कंफर्टेबली रहते हो आपसे दुबते नहीं हैं बेटा तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है

0: 보려나 이게 막 티가 안 읽고 담아 원룸
1: Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
2: To be honest, I want Arslan to take it. Aloha is also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
3: The crowd buzzes with electric energy as Arslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
4: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
5: Oh, that is game number one for Lohai.
3: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
6: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूं कि मैं ना लूं मैं कुनिमिट से ले लेता हूं क्योंकि मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ वाज लाइक हां तुम उसके साथ खेलो कुनिमिट से और उसकी गलतियां देखो
3: In the second round, Arslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
7: Arslan looking good in that last game, and knee comes up on
4: oh
7: the stage.
4: Oh my God!
7: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
3: Knee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Arslan will clear his own path to the throne.
7: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
3: Arslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
6: नहीं ज़फ़ीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नॉकटिस
8: और बताया इतना वीक भी होगी हम ज़फ़ीना
6: हाँ नर्क भी होगा पता है आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाकी आप तो कहाँ साथ हैं और देखते हैं आप
8: और मानो भी साथ
6: मानो भी वैसे तो जीतना है तो मानो ने जिताना मानो मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी मैं ठीक
8: है आप
3: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
6: Yes, I absolutely believe it, because I had two married women before my marriage. And before marriage, I used to hear a very strange story from the wedding, which I absolutely believe in. I think the world is, so you should listen to every person's story. Some people believe that शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है जब शादी कर ली जिम्मेदारियाँ आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो उनके बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते लेकिन मैं शादी के बाद दो चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी
3: Arslan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Ni enters the harsh loser's bracket to face Rangchu.
4: There you go.
5: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Ni to take the set.
4: All right, here we go. Already blocking. Big one.
5: Oh,